एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

कृष्ण भगवान की, एक कौशल्यानंद भगवान की, एक दशरथ नंदन भगवान की, एक कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदाब, सुप्रभात। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इस विशेष प्रसारण द्वारा हम आकाशवाणी से सभी श्रद्धालुओं का, सभी बाबा के भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हुए आज की इस सभा का आरंभ करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज के इस विशेष प्रसारण में मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संबंध में आप सुन रहे हैं बालतल मार्ग पे FM 103.7 MHz पर, पहलगाम मार्ग पे FM 100.1 MHz पर, और आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं, आराधना चैनल पर भी, और न्यूज़ होने IR की मोबाइल ऐप, और साथ ही साथ आप हम उपलब्ध हैं प्रसार भारती के वेव्स OTT

प्लेटफॉर्म पर भी श्रोताओं आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे एकमात्र मोबाइल नंबर 9596990954 पर, और अपना अनुभव या इस प्रसारण से जुड़ी कोई सलाह सुझाव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मैसेज भी जो है भेज सकते हैं, या साथ ही साथ आप अपने वॉइस नोट्स भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जिनको हम इस प्रसारण में जो है अवश्य शामिल करेंगे, और हम ये कहेंगे कि आपकी बात हमारे लिए महत्व रखती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज प्रातः भगवती नगर के प्रथम आधार शिविर से 3029 बाबा के भक्तों को जो है वादी की ओर रवाना कर दिया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 2310, महिलाएं 590, बालक 14, साधु 45, साध्वी 40, और इनमें कुछ विदेशी तीर्थयात्री भी हैं जो कि पुरुष हैं, जिनकी संख्या 30 है। यूं कुल मिलाकर ये संख्या जो है बन जाती है 3029, जिनको आज जो है प्रथम आधार शिविर जम्मू भगवती नगर से घाटी की ओर रवाना कर दिया गया 151 छोटे बड़े वाहनों में।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और इस प्रसारण में हमारा यही प्रयास रहता है कि आप तक जो है ताज़ा अपडेट्स पहुंचती रहे, यात्रा से जुड़ी हर एक बात जो है आप तक पहुंचाते रहे। और इसी जो सिलसिले में है हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता रामबन से मोहम्मद तस्कीन जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं इनके पास यात्रा को लेकर। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। श्री अमरनाथ यात्रा का 21वां बेज जो है आज जम्मू से अलग सुबह करीब 3:45 रवाना किया गया है, जिसमें 3,029 यात्री सवार हैं और 151 गाड़ियां हैं, बसें हैं, कारें हैं, जीपें हैं इसमें, इस काफले में शामिल। और दोनों काफले इस वक्त जो कश्मीर से बालतल से वापस भी आ रहा था और जो जम्मू से निकाला गया है बालतल की तरफ, तो दोनों काफले इस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। आज कुछ वक्त से पहले ही पहुंच गए, तो ये दोनों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो जम्मू से बालतल के लिए काफला आ रहा है तो ये रामबन क्रॉस करके बनिहाल की तरफ बढ़ रहा है और कुछ वक्त के बाद ये बनिहाल पहुंच रहा है, जहां पर इनका सुबह खाने पीने का, नाश्ते वगैरह का इंतजाम रखा गया है। तो उसे इनको मुस्तफीद कराकर कश्मीर घाटी की तरफ रवाना किया जाएगा। जबकि इसी तरह बालतल डाउन से भी जो कानवाई आ रही है वो भी बनिहाल पहुंच चुकी है। अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने ये जो टनल क्रॉस करके बनिहाल काजीगुंड टनल क्रॉस किया और ये बनिहाल में पहुंच गए हैं। तो इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, इस पर स्लाइडिंग का जो इशू है पिछले कई रोज से मुसलसल चल रहा है
0: जी।
1: आज रात को भी जो ट्रैफिक बड़ी देर तक ट्रैफिक जामिंग थी इस नाशरी टनल के आर पार, चिनारी नाशरी एरिया, उधमपुर एरिया, तो उसे क्लियर किया गया। भारी ट्रैफिक था कि एक अंदाजे के मुताबिक करीब 2,000 गाड़ियां जो परसों रात से फंसी हुई थी उन्हें आज रात में क्लियर किया गया है और हाईवे बिल्कुल ओके किया गया था यात्रा गुजारने के लिए और इस पर यात्रा गुजर रही है। मौसम अब आलूद है पूरे इस रामबन बनिहाल सेक्टर में, लेकिन बारिशों का भी कोई वो इम्कान दिख नहीं रहा है, लेकिन जो बादल हैं बहुत गहरे हैं इस वक्त और धुंध भी छाई हुई है और खुशगवार मौसम बना हुआ है। फिलहाल यात्रा के दोनों काफले रामबन से बढ़ रहे हैं अपने अपनी मंजिलों की तरफ, बालतल जाने वाला भी और बालतल से वापस आने वाला
0: भी यात्री
1: भी। जी
0: जैसा कि कहा आपने कि अभी वहाँ पर जो है बादल छाए हुए हैं, वर्षा होने की संभावना फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, तो इस के लिए यही कहेंगे कि मौसम इस वक्त खुशगवार है और खुशगवार मौसम में हमारे यात्री जो है इस यात्रा को की ओर बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल मौसम बहुत खुशगवार है, अच्छा मौसम है, मतलब ब्रीज है सुबह की और वो गर्मी का कल भी कम ही थी क्योंकि पिछले दिनों जो बारिशें हुई उसने मौसम को अक्सर बदल दिया है। तो उससे जो श्री अमरनाथ यात्री हैं वो भी बहुत मजा ले रहे हैं इससे जो मौसमी सूरत हाल है। इसमें यहाँ पर एक बात ये ऐड करना चाहें श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए कि कल भी जो 3 बजे और 2 बजे के बाद रिस्ट्रिक्शन रखी गई है कश्मीर की तरफ जाने के लिए, यानी 2 बजे बाद चंद्रगुड़ से कश्मीर जाने नहीं दिया जाता ना यात्रियों को ना टूरिस्ट गाड़ियों को, और 3 बजे के बाद बनिहाल से कश्मीर जाने नहीं दिया जाता है टूरिस्ट और यात्रा गाड़ियों को। और आज भी ये रहेगा ये शेड्यूल, क्योंकि जब गुज़श्ता रात हम कल नहीं परसों की बात करें तो करीब 1100 लोग ऐसे जो 3 बजे के बाद बनिहाल पहुंचे थे, बनिहाल में रोके गए थे रात को, 1100 से जायद जिनमें यात्री भी थे और टूरिस्ट भी थे। इसलिए जो यात्री जम्मू से निकलते हैं उन्हें ये हर वक्त प्लान करना चाहिए कि उन्हें 3 बजे के बाद बनिहाल टनल से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इसलिए जो भी अनरजिस्टर्ड जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको ये अगर वो हमारी नशरियात सुन रहे हैं आकाशवाणी की है, तो उन्हें ये

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण के साथ। और आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स और यहाँ पे उससे पहले ये बात बताना चाहेंगे, आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में ख़राब मौसम और वर्षा की संभावना को देखते हुए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे हम ये कहेंगे कि TCU श्रीनगर रामबन जम्मू से सड़क की स्थिति का पता करने के बाद ही जो है यात्रा करें। और यात्रियों को ये भी सलाह दी जाती है कि वे जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर सड़क की स्थिति की जानकारी लें और तभी जो है अपनी यात्रा को आरंभ करें।

0: श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के संबंध में आप हमारे साथ बने हुए हैं। और आपको बता दें कि इस प्रसारण में हम यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जो है आपके साथ साझा करते हैं, और हर छोटी बड़ी जानकारी जो है आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रहीम रिजवान बालताल से जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के माध्यम से। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ताज़ा स्थिति है आज यात्रा को लेकर, यात्रा मार्ग को लेकर इनके पास। जी रिजवान साहब।
1: जी मैम, इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को श्री अमरनाथ जी यात्रा की गतिविधि एवं मौसम की सूचना साझा करते हैं, ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान उन्हें बालतल क्षेत्र के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिले। श्रोताओं, आज बालतल के पूरे पहाड़ी क्षेत्र में मौसम की स्थिति सुहावना बनी हुई है, धूप खिली हुई है। अगर मौसम विभाग ने आज से फिर घाटी में वक्फे से वर्षा होने की भविष्यवाणी की है, ताहम यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं बनी हुई है। सुबह सवेरे अगर आकाश पर बादल छाए हुए थे, अलबत्ता वह सूर्य चढ़ते ही गायब हुए एवं आकाश साफ नजर आ रहा है। इस वातावरण में सुहाने मौसम एवं ताजा ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए आज बालतल बेस कैंप से 8,653 यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई।
0: जी।
1: 4 बजे से धुमेल कंट्रोल गेट पार करके गुफा के और रवाना होने वाले इन यात्रियों में 6,515 पुरुष, 1,767 महिलाएं, 154 बालक बालिका, 22 साधु, 21 साध्या एवं 174 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। जय बाबा बर्फानी हरण महादेव का पवित्र नाद करते हुए यह यात्री दर्शन के लिए ऊंचे पर्वतों के बीच पैदल डांडी एवं गोडू पर सवार होकर गुफा की तरफ निकल पड़े। यात्रियों ने जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने हाथों में लाठियां, रेनकोट, गर्म कपड़े, पानी की बोतलें, आरएफआईडी कार्ड एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं साथ रखकर ही पवित्र सफर शुरू किया, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उन्हें बार बार यह सूचना दी जाती है कि वह बालतल मुखी मार्ग से यात्रा के दौरान आरएफआईडी कार्ड, रेनकोट, लाठी, गर्म कपड़े जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं साथ रखें, ताकि उन्हें तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इधर सरकार

0: दो टर्नर जनरल एवं 279 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। इस तरह बालतल मुखी मार्ग से आज भी बीते दिनों की तरह तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। यात्रियों को पवित्र गुफा तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, जबकि सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिसको लेकर यात्री संतोष व्यक्त कर रहे हैं। जी
1: जी रिजवान साहब, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता रहीम रिजवान, जो बालताल के मार्ग से हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके थे, जिन्होंने कहा कि उच्च स्तर की जो है सुविधाएं रखी गई हैं हमारे यात्रियों के लिए, और यात्रा जो है बहुत ही आनंदमय मौसम में, माहौल में जो है चल रही है, और हमारे तीर्थ यात्री जो है इस मौसम में प्रसन्न भी हैं, और वहाँ पर जो है भविष्यवाणी यानी मौसम की भविष्यवाणी जो हुई है कि वर्षा होने की संभावना है, वहाँ पर फिलहाल उनको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मौसम बहुत ही सुहाना है और सुहाने और प्रसन्नता भरे माहौल में ये यात्रा जो है जारी है, चल रही है। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे संग।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे साथ बने हुए हैं। और श्रोताओं, अब बता दें आपको कि इस प्रसारण में हम यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात जो है आपके साथ साझा करते हैं। बने रहिए हमारे संग। और अभी जो है, अभी आपको आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज लिए चलते हैं, जहां से आप कुछ ही समय में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुन पाएंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
4: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमन वेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey.

0: proud. Moreover, weightlifters Valluri Ajaya Babu and Ganeshwari Yadav clinched a silver each as India enjoyed another productive day at the Games. Valluri Babu narrowly missed the gold in the men's 79kg competition after finishing just 1kg behind Malaysia's Mohammad Eri Hidayat. Earlier in the day, Ganeshwari opened India's account on the second day of competition by claiming silver in the women's 53kg event on her CWG debut. Short putter Shilpa Shaila also secured a dramatic bronze medal in the women's short put F57 event after a successful post-match protest and review stripped Nigeria's Yukeria Iyazi of her valid mark. With this, India's total medal count stands at 10, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze at the Glasgow 2026 Commonwealth Games. Meanwhile, Indian boxer Lovlina Borgohain is already assured of a medal at Glasgow 2026 after receiving a quarter-final bye in the women's 75kg event. Chirag Jha from Sports Desk.
1: President Draupadi Murmu has congratulated Sharmila Dhankar on winning the gold medal in the women's short put F57 event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, the president said that by becoming India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para-athletics, Sharmila has achieved a landmark feat. The president also congratulated Sarvesh Anil Kushare for clinching the silver medal in the men's high jump event at the Commonwealth Games. Further, President Murmu congratulated Valluri Ajaya Babu on securing the silver medal in the men's 79kg weightlifting event. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated Bindya Rani Devi Sorokhaibam for winning bronze in the women's 58kg event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neena Arakkal.
2: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines The Statesman. The Pioneer in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nidakani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home three more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyoko Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's short put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का अहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉर्ट पुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है।
4: अब
3: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम वन की कामयाबी ने कई दिगर दिलचस्प मौजूद पर खास तौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाज फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम वन की कामयाबी की सताइश की थी।
4: विक्रम वन इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
5: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी, इंतकामी या नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
3: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। इधर तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदु किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैरून बैनुल अक्वामी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैनुल अक्वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्वे सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में

0: मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मजबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिसरी ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तिजारती और इकतसादी राबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सिफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिसरी ने बीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के राबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। देही इलाकों में तकरीबन 50 सड़कों का रास्ता बंद है और बहाली का काम जारी है। अलबत्ता चार धाम यात्रा का रास्ता फिलहाल खुला है और इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौ इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिनहा है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रिवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज पीरू के यौम आज़ादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पीरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरक खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरक खेलों के दौरान शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरक खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारत

0: हाई जंप पर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदे जमुरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेट लिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉटपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी, जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे, जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया गौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाक़े पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई के इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वजीर आजम ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काई रूट एरो स्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का अहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं और ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन पा रहे हैं।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में हमारे संग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं ताकि आप तक जो है यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी पहुंचती रहे जो महत्वपूर्ण हो। और इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रथम आधार शिविर भगवती नगर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता जावेद मेहराब। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं इनके पास। जी जावेद साहब
1: जी, देखिए मौसम विभाग की एन भविष्यवाणी के मुताबिक ही यहाँ जम्मू में रात को ही बादलों का आसमान पर घेराव था और रात भर बिजली चमक के साथ साथ बारिशें भी रही और अभी भी शहर में हल्की बारिशें हो रही हैं। लेकिन उमस के बावजूद आज भी भगवती नगर निवास स्थान से 3,029 श्रद्धालुओं का जत्था यहाँ से बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज में रवाना हुआ। और बाबा बर्फानी के तीर्थयात्रियों का ये जत्था जिसमें 2,310 पुरुष, 5,590 महिलाएं, 14 बच्चे और 45 साधु और 40 साध्वी के साथ साथ 30 विदेशी श्रद्धालु भी शामिल रहे। 151 वाहनों में आज का जत्था हर्षोल्लास के साथ बालटाल मार्ग की तरफ अग्रसर है। वहीं कल शहर में दिन भर धूप रही और श्रद्धालु पिछले दो दिनों से यहाँ धूप के दरमियान शहर भर में देखे जा सकते थे और खासतौर पर यहाँ के मंदिरों में हो रही श्रावण के महीने में पूजा अर्चनाओं में हिस्सा लेते हुए। कल चूंकि सोमवार था, कल का दिन श्रावण के

0: सर्दी यहाँ हर मंगलवार को लगभग 2 अगस्त से आगे भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ जो है श्रावण के महीने में इस मंदिरों के शहर में पूजा अर्चनाएं हो रही हैं, और 2 दिनों की इस बीच की धूप में, क्योंकि सारा मौसम जो है पिछले लगभग 10 दिनों का ये बारिशों का मौसम रहा, और कल रात से ही यहाँ दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इन 2 दिनों के दरमियान श्रद्धालुओं का शहर के बीचों बीच आना, बाजारों में दिखना और खासतौर पर मंदिरों में दिखना बिल्कुल देखा जा सकता था। तो इधर यात्रा के सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन और आधारशिवर भगवती नगर और यात्रा मार्ग पर तमाम तरह की सुविधाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाने पीने की व्यवस्था को और सुनिश्चित बनाने के लिए भी समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालुओं को मौसम के बावजूद, क्योंकि श्रावण के महीने में लगातार बारिशें और बाकी सारी चीजों का भी दिक्कतों का सामना होता है, लेकिन उसके बावजूद सारी चीजों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए और उसके लिए भी समीक्षा हुई, और मौसम की स्थिति को देखते हुए खास तौर पर वाहनों की सुरक्षा और जांच के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया, क्योंकि खासतौर पर मौसम खराब मौसम में कई बार जो वाहन यहाँ से भगवती नगर आधारशिवर से निकलते हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच हो और जांच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ये खास तौर पर इस बैठक में यहाँ सुनिश्चित किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न हो। प्रशासन ने खास तौर पर श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम के बदले रुख के चलते एक बार फिर दिशा निर्देश का पूर्ण पालन करें और एक साथ मिलकर काफिले के साथ चले और मौसम के रुख के कारण सावधानी भी बरतें। तो ये खास तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि मौसम का रुख लगातार चेंज होता रहा है, तो इस दौरान जो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर भी भूस्खलन के कई वाकयात हुए, लेकिन इसके बावजूद जो मेन एंड मशीनरी यहाँ लगी हुई थी, जो कर्मचारी और
1: जी जी
0: जो जो अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं उन्होंने रास्ते को भी क्लियर किया है, और साथ साथ ही लगातार जो तीर्थ यात्रा है वो यहाँ से रवाना होती रही है। तो इस सिलसिले में खास तौर पर अब श्रद्धालुओं को भी दिशा निर्देश का पालन करने की के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि एक साथ मिलकर ही काफिले के साथ चला जा सके, मौसम के रुख के कारण जो है सावधानी जो
1: बढ़ती
0: बरतनी
1: जाए।
0: चाहिए,
1: जी,
0: जिसमें खास तौर पर एडवाइजरीज जो हैं वो जो यहाँ क्या कहते हैं अपना जो सावधानियां बरती जानी चाहिए उसको लेकर खास तौर पर उन्हें बताया जाता है, ताकि जो यात्रा के दौरान किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं को यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसके साथ साथ जो उनको साथ रखने की चीजें हैं जैसे छाता है, बरसाती है, लंबे जूते हैं, कपड़े गर्म कपड़े हैं, इन सारी चीजों की को भी बार बार तीर्थ यात्रियों को बोला जाता है, ताकि मौसम के कड़े रुख के दौरान उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो तभी इसी को लेकर मौसम के रुख के कारण ही सावधानी को बरता जाना चाहिए, इस पर खास दिशा निर्देश दिए गए। और जम्मू शहर में बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की लगातार प्रस्थान के साथ ही अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही है।
1: जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता जावेद मेहराब आधारेश्वर भगवती नगर से, जिन्होंने हमें ये बताया कि इस वक्त जो है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये यात्रा जो है जारी है, और एडवाइजरीज़ के बारे में बता दिया ताकि ये यात्रा जो है बहुत ही सुरक्षित और सुखद तरीके से चलती रहे। श्रोताओं, आपको यहाँ पर ये भी हम साझा आपके साथ करना चाहेंगे कि आज 8 बजे तक की बात करें तो 426 बाबा भोले के भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के द्वार पर जो है अपना माथा टेका है और दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 270, महिला 115, बालक 11, साधु 5, साध्वी 1 और सुरक्षा कर्मचारी जो है वो 24 हैं, और यूं कुल मिलाकर

426 बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं ने जो है बाबा भोलेनाथ के द्वार पर हाजिरी दी है।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के व्यूज़ OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है आप हमें सुन पा रहे हैं। आपको बता दें कि जो छोटे वाहन हैं उनके लिए कट ऑफ जो टाइमिंग है, उस कट ऑफ समय जो है इन जगहों के से जो रवाना होने का समय है, आपको बता दें नगरोटा से श्रीनगर की ओर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, उधमपुर से श्रीनगर की ओर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और काजीगुंड से जम्मू की ओर सुबह 11:30 से शाम 5:30 तक। और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जम्मू और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर सभी जो है संबंधित लोगों यात्रियों को ट्रैफिक एडवाइजरी और कट ऑफ समय के बारे में जानकारी देंगे अगर आप उनसे जो है संपर्क करते हैं तो। और आपको बता दें कट ऑफ समय से पहले या बाद में किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो था, ये जो हमने एडवाइजरी आपको बता दी आपके साथ साझा की, ये थी छोटे वाहनों के लिए। और अब बड़े वाहनों की बात करें तो उनमें आपको बता दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौसम ठीक होने, सड़क की स्थिति बेहतर होने और ट्रैफिक की स्थिति जो अभी है और अंकलन करने के बाद ही जो है बड़ी गाड़ियों को यानी बड़े वाहनों को उधमपुर से चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि शाम 7 बजे के बाद किसी भी बड़ी गाड़ी को, बड़े वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। बड़े वाहन को रवाना करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट उधमपुर, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन के साथ जो है संपर्क करें। इसके अलावा चल रही, हम ये बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर ताज़ा और जल्दी ख़राब होने वाले सामान ले जाने वाले हम ये कहेंगे कि बड़े वाहनों को, ट्रकों की आवाजाही को बिना किसी परेशानी से सुनिश्चित किया जाएगा।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। और आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर कुछ रखरखाव का काम हो रहा है। पिछले दिनों की लगातार वर्षा से यात्रा मार्ग पर जो है कुछ रखरखाव का काम बन गया है, और इसी कारण से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि अब जो है कुछ दिनों तक और जो है या भगवती नगर से यात्रा जो है सिर्फ एक ही मार्ग से जाएगी। यानी यात्रा को इस पवित्र यात्रा को फिलहाल जो है हम ये कहेंगे कि इनको फिलहाल जो है एक मार्ग से निलंबित किया गया है। किसी भी यात्री या यात्रा को जो है अनुमति नहीं दी जाएगी कि यात्रा जो है अभी सिर्फ और सिर्फ बालतल के मार्ग से ही होगी, और पहलगाम के प्राचीन मार्ग से फिलहाल किसी भी यात्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि किसी भी यात्री को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पहलगाम के प्राचीन मार्ग से यात्रा के लिए जाएं, जब तक कि नए आदेश जो है नहीं मिल जाते हैं।

श्रोताओं, आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो जम्मू कश्मीर में जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है चलती है। कहा जाता है कि 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी गुफा में प्राकृतिक हाम शिवलिंग का निर्माण होता है और कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती को वो अमर कथा सुनाई थी जिससे मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदू कैलेंडर में एक प्रमुख आयोजन है। ये यात्रा स्थानीय लोगों के समर्थन से सफलता से और हम ये कहेंगे कि सफलता पूर्वक अंत को पहुंचती है। अमरनाथ यात्रा से जुड़े हर व्यक्ति का यही प्रयास रहता है कि ये यात्रा सुरक्षा पूर्वक, शांति पूर्वक और सुखद तरीके से सफल हो और हमारी भी प्रार्थना यही

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। ये प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि कुल मिलाकर आज प्रथम आधार शिविर भगवती नगर से कुल मिलाकर 3029 बाबा के भक्तों का को जो है आज ये सौभाग्य मिला है कि वो यात्रा के लिए जो है रवाना कर दिए गए हैं बालतल के मार्ग से, जिनमें पुरुषों की संख्या 2310, 590 महिलाएं और बालक 14, साधु 45, साध्वी 40 और इनमें विदेशी या तीर्थयात्री भी 30 शामिल हैं। अब से बस श्रोताओं, आपको बता दें कि कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सियाती सरगर्मियां जम्मू कश्मीर की इख्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। एसकेआईसीसी श्रीनगर में एथिकल टूरिज्म कन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाती सरगर्मियों को जामिया बनाया जाना चाहिए ताकि इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद और नौजवान बाइख्तियार बन सकें।
1: विकास और संरक्षण, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ये केवल सरकार से नहीं होगा, समाज के साथ मिलकर के ही हो सकता है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रिस्पांसिबल टूरिज्म आगे बढ़ने और तरक्की की महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करता है, बल्कि वो एक मजबूत आधार देता है हमें, जिस पर लॉन्ग टर्म और संतुलित विकास की इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि लोकल कम्युनिटी, हमारे यूथ इनोवेशन को संवेदनशीलता के साथ जोड़ें, तकनीक को संस्कृति के साथ जोड़ें और विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ें, तो एक दिन देश के अन्य राज्य भी जम्मू कश्मीर के मॉडल का अध्ययन करेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे।
0: इस कन्क्लेव का एहतमाम टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड JNK ने किया था। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में संगम इंडस्ट्रियल इस्टेट का दौरा करके वहां क्रिकेट बैट तैयार करने के अमल और इस सन्नत से वापस अफराद को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। वजीर आला ने इस मौके पर क्रिकेट बैट सन्नत को मजीद फरोग देने और इस सिलसिले में खाम माल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि कुदरती आफात के असरात से निपटने के मंसूबों में आज की सरमायाकारी मुस्तकबिल के लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिकन्स्ट्रक्शन महकमे की कारगुजारी का जायजा लेते हुए उन्होंने इस सिलसिले में तश्कील दिए गए 5 जहती जामिया मनसूबे की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि कुदरती आफात के लिए कश्मीर को काफी हसास करार दिया गया है, जिससे ये लाजमी बनता है कि इन आफात से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को न सिर्फ फरोख देना है बल्कि मुस्तकम और पायदार बनाना भी नागुजीर बन गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की सदारत में जिला सतह एनकॉर्ड कमेटी की एक मीटिंग मुनाकिद हुई। 100 रोजा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनाकिद इस मीटिंग में जिला श्रीनगर में मुनशियात मुखालिफ मुहिम का जायजा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि अब तक 169 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 238 मुनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 103 करोड़ रुपये मालियत की गैर कानूनी जायदाद जब्त और 99 बैंक खाते मुंजमद किए गए हैं। मीटिंग में मजीद कहा गया है कि कार्रवाई के तहत 101 ड्राइविंग लाइसेंस, 69 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और 70 दवा फरोशों की लाइसेंस मुअत्तल की गई। मीटिंग में मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया गया। उधर गांधरबल और बांडीपुरा अजला में भी एनकॉर्ड कमेटियों की मीटिंग मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की सदारत में मुनाकिद हुई। इन मीटिंगों में दोनों अजला में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात के इंसाद से मुतल्लिक इकदाम का जायजा लिया गया। दोनों डिप्टी कमिश्नरों ने मुतल्लिका अफसरान, खसूसन एक्साइज और ड्रग कंट्रोल महकमों को मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने, निजी मेडिकल स्टोरों की सख्त निगरानी की हिदायत दी। स्कॉच कश्मीर के इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ने IIN कोलकाता इनोवेशन पार्क के इश्तराक से स्पार्क सोशल उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में नौजवानों को नफा बख्श और मोहसर समाजी कारोबार के फरोग की तरगीब दी गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इख्तिरा और कारोबारी सलाहियतें माशरती मसाइल के हल और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए नागुजीर हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने बैन अक्वामी तालीमी ताउन को फरोग देने के लिए जर्मनी की पीटरबॉर्न यूनिवर्सिटी के साथ एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। माहदे के तहत दोनों इदारे तदरीस, तहकीक, तलबा व असातिज़ा के तबादले और मुश्तरक तालीमी सरगर्मी में ताउन करेंगे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा है कि यह इश्तराक तहकीक और अलमी रवाबित को मजीद मुस्तकम करने में माउन साबित होगा। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा बालतल के रास्ते जारी है। ताहम पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी होने की सूरत में इस रास्ते से यात्रा आरजी तौर बंद है। भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से आज सुबह यात्रियों का 21वां जत्था बालतल के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन के लिए वादी की तरफ रवाना हुआ। इस बीच आज सुबह 8 बजे तक 426 मजीद यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। यात्रा शुरू होने से अब तक 4,26,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। और अब درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا، خدا حافظ۔

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और ये विशेष प्रसारण आप सुन पा रहे हैं बालताल के मार्ग पर FM 103.7 MHz पर, पहलगाम के मार्ग पर 100.1 MHz पर एवं DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी जो है हम उपलब्ध हैं और आप हमारे साथ बने हैं। आपको आपके साथ ये जानकारी जो है साझा करते हैं कि आज 9 बजे तक यानी प्रातः 9 बजे तक कुल संख्या जो बाबा के भक्तों की रही 904, जिनको बाबा भोले के द्वार पर दर्शन के सौभाग्य जो है प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 580, महिलाएं 245, बालक 19, साधु 10, साध्वी 1 और सुरक्षा कर्मचारी 49, और यूं ये संख्या बन जाती है 904 आज 9 बजे तक, जिनको बाबा भोलेनाथ के दर्शन के सौभाग्य जो है प्राप्त हुए हैं।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, जिसमें हम अपने संवाददाताओं से जुड़ते हैं और आप तक यात्रा से जुड़ी क्षण क्षण की जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इमरान नायकू, जो कि आधार शिवर श्रीनगर से यानी कि पांथा चौक से हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनके पास क्या कुछ ताज़ा जानकारी है। जी इमरान
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि बार बार हम या कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जो जारी है, और इस सिलसिले में अब यात्रियों की जो आमद है वो पिछले कई रोज से मौसम की खराबी के बाद से जब से रिज्यूम हुई है तब से जारी है। और श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में भी यहाँ अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं, और जैसे आज सुबह यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों का एक जत्था जो है वो पहलगाम की तरफ सोनमर्ग की तरफ रवाना किया गया, क्योंकि पहलगाम का जो रूट है उस पे काम चल रहा है मेंटेनेंस का। और इसके अलावा यहाँ कई सारे यात्री रात को रुके थे जिन्होंने स्टे किया था और जो यहाँ से आज सुबह रवाना किए गए। इसके अलावा यात्री मुसलसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ यात्रियों के लिए सारी सरकार की तरफ से सुविधाएं रखी गई है, जैसे कि हम उसका अपडेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा कल शाम को जैसे कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने भी बताया कि यात्रियों के लिए एक SOP जो है वो सेट कर दिया गया है, और उनसे ये अपील की गई कि वो स्ट्रिक्टली उन SOPs को फॉलो करें। और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अपडेट किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रैक पे काम हो रहा है पहलगाम पर तो वो भी बहुत जल्द मुकम्मल होगा और उसका भी अपडेट किया जा रहा है। और ओवरऑल उन्होंने ये कहते हुए खुशी का इजहार किया कि 4 लाख से ज्यादा जो है कल तक अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है
0: जी।
1: और इसके अलावा यात्रा भी बड़ी स्मूथली जारी है, और साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मैंने कहा कि SOPs या गाइडलाइंस अमरनाथ जी यात्रियों के लिए पहले दिन से जारी की गई थी या इशू की गई थी, उनसे ये अपील की गई कि वो उन SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जहां मुख्तलिफ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए जो कैंप्स या जो ट्रांजिट कैंप्स एस्टैब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहीं श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में भी अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं पहले दिन से ही, और यहां से फिर उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है, और आज भी यहाँ यात्री पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जो यात्री यहाँ रुके थे उनको सुबह जैसे मैंने कहा कि कॉन्वॉय में अमरनाथ जी गुफा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है, वहाँ भेज दिया गया है। तो यात्रियों से कंटिन्यूअसली हमारी बात हो रही है, उनसे उनका फीडबैक हम हासिल करें, खासकर अरेंजमेंट्स को लेके या अगर उनकी कोई ग्रीवेंस हो, कोई शिकायत हो। सच हम देख रहे हैं कि अभी तक किसी की कोई शिकायत या ग्रीवेंस हमें मौसूल नहीं हुई है, हमने किसी से रिसीव नहीं की है, और यात्री काफी खुश है कि मौसम में खासकर बेहतरी आई है। और जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है, श्रीनगर में बिल्कुल धूप इस वक्त खिली हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम जो है बेहतर होता जा रहा है, और हम यही दुआ करते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ शफाफ साजगार रहे इसी तरीके से, ताकि ये यात्रा जो है पूरा मन तरीके से जारी व सारी रहे।
0: जी इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस ताज़ा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। श्रोताओं, ये थे इमरान नायकू, जो कि आधार शिवर श्रीनगर से यानी कि पांथा चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन के माध्यम से, जिन्होंने ताज़ा स्थिति की जानकारी दी, बताया कि मौसम जो है बहुत सुहाना है, और तो और बाकी जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हुई हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से की हैं, ताकि हमारे यात्री जो है संतुष्टि के साथ, सफलता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से ये पवित्र यात्रा जो है इसको पूर्ण करें। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए हमारे संग।

0: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और इस वक्त पहलगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ ताज़ा जानकारी है इनके पास यात्रा मार्ग को लेकर। जी तारिक साहब,
1: बहुत शुक्रिया प्रणाम। इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा आदर शुभ प्रभात। आज 28 जुलाई है और श्री अमरनाथ जी यात्रा का 20वां दिन। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्राचीन अमरेश्वरी मार्ग पर इस वक्त मौसम आम तौर पर बादलों से ढका हुआ है, जबकि बीच बीच में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी होने का भी इम्कान बना हुआ है। हालांकि मैं ये भी कह दूं कि अभी खुशगवार नजर आ रहा है मौसम। पवित्र अमरनाथ गुफा के आसपास आज दर्जे हरारत 9 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि हवा में नमी की मात्रा 90 से 99% तक बनी रह सकती है। दिन भर आकाश में बादल छाए रहेंगे, अलग अलग स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। निचले आधार शहरों में दर्जे हरारत लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट महसूस की जाएगी। हवाएं जनूबी पश्चिम दशा से हल्की रफ्तार से चलने की संभावना है, तहम ऊंचे इलाकों में कोहरे और निचले बादलों का कारण कहीं कहीं दिशा कम हो सकती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर हल्की सी मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है। इसके मद्देनजर प्रशासन मौसम और यात्रा मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। ऊंचाई वाले दिशवार यात्रा पथ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही का निर्णय मौसम और मार्ग के वास्तविक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। हालिया वर्षा के बाद यात्रा मार्ग पर उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पहलगाम मार्ग से यात्रा को फिलहाल आधी तौर पर निलंबित रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए चंद्रवारी से पवित्र गुफा तक प्राचीन यात्रा मार्ग पर अवशेष मरम्मत और पुनर्बहाली का कार्य तेजी से जारी है। आप जानते हैं कि हालिया वर्षा के कारण दुश्वार बाणी मार्ग के कई स्थानों पर कटाव और नुकसान पहुंचा है। इसके चलते यात्रा पथ की बार बार मरम्मत और पुनर्बहाली आवश्यक हो जाती है। तो इसी क्रम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO और संबंधित विभाग भी आज भी मार्ग की सफाई मरम्मत और पुनर्बहाली के कार्यों में लगे हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित सुगम और सहज बनाया जा सके। 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में 3 जुलाई से अब तक 4,24,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो पहले से निर्धारित आकलन से भी अधिक है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 151 छोटे बड़े वाहनों में मुश्तमिल 3,029 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था बालतल मार्ग के

0: अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी नगर शहर में भी श्रद्धालुओं के लिए इस्तेमाल के पूरी तरह तैयार है। यात्रा के आरंभ से ही श्रद्धालुओं की ये सलाह दी जाती है कि वो यात्रा के दौरान अपने साथ पहचान पत्र, छतरी, छड़ी, मजबूत सफरी जूते और गर्म वजीले कपड़े अवश्य रखें और यात्रा के दौरान अपने जत्थे से अलग ना हो ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। माहौलियात के संतुलन को बरकरार रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर हर तरफ सफाई मित्र तैनात है। जगह जगह शौचालयों और पानी के शुद्ध जल के व्यवस्था उपलब्ध है। सैनिटेशन विभाग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी मुस्तैदी और संपूर्ण के साथ निभा रहे हैं।
1: जी तारिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि मौसम जो है बेहतर हो गया है, सुहाना हो गया है, तो क्या पवित्र गुफा के पास का मौसम भी इस वक्त बेहतर है, ठीक है?
0: बिल्कुल, पवित्र गुफा की जब हम बात करें, इस वक्त सुबह से ही मौसम बिल्कुल ठीक है। थोड़ी थोड़ी ये जो ऊंची पहाड़ियों से हमें वो गर्म गर्म किरणें भी नजर आती है, लेकिन
1: जी
0: एक चीज है कि जो मौसमियात की जो पेशगोई है, जो
1: जी
0: भविष्यवाणी होती है, तो
1: जी
0: हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो भी हमने मौसम के जो हाल बताया था कि दोपहर और शाम तक क्या स्थिति हो सकती है, ये सारी की सारी मौसमियात की भविष्यवाणी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कोई ज्यादा बारिश नहीं होगी, अगर इतनी तो इतनी बारिश हो सकती है कि इसमें दर्शन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा।
1: लेकिन
0: इसमें
1: अभी जी जी
0: कोई बड़ी
1: भारी
0: बारिश नहीं
1: वर्षा की
0: होगी
1: बात
0: जिससे।
1: नहीं है। जी, तो हम यही
0: बिल्कुल
1: आशा करते हैं कि मौसम अच्छा रहे, सुहाना बने रहे, ताकि ये यात्रा जो है सुखद तरीके से चलती रहे। आपका इस हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता एस तारिक, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से जो है ये जानकारी हम तक पहुंचाई कि हमारे ये बताया कि इस वक्त यात्रा मार्ग पर कुछ रख रखाव का काम हो रहा है, जो कि पिछले दिनों की लगातार वर्षा हुई थी और यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुई थी और कुछ रख रखाव का काम जो है आ गया था, और इस कारण से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि कुछ दिनों तक जो है पहलगाम के प्राचीन मार्ग से किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति फिलहाल जो है नहीं दी जाएगी। नए आदेश आने तक जो है अभी बालतल के मार्ग से ही यात्रा जारी है और जा रही है, और लगातार वर्षा से जो है सड़क में भी कुछ जो है समस्याएं हो गई थी, जिस वजह से उस रास्ते से, उस मार्ग से, यानी कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग से यात्रा को निलंबित करना पड़ा। और फिलहाल हम यही हमारी आशा भी है, हमारी मनोकामनाएं भी यही है कि ये यात्रा जो है सुखद तरीके से यूं ही चलती रहे।

0: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप और श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और आपको बता दें कि बालताल के मार्ग से तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के नाम का जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, नारे लगाते हुए बहुत ही सुहाने से मौसम में आगे बढ़ रहे हैं यात्रा की ओर।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और ये विशेष प्रसारण आप बालतल के मार्ग से फिल्म 103.7 मेगाहर्ट्ज पर सुन पा रहे हैं। पहलगाम के मार्ग पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। और आपको बता दें कि 10 बजे तक 2367 तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन पाने का सौभाग्य जो है मिला है, जिनमें पुरुषों की संख्या 1470, महिलाएं 775, बालक 34, साधु 14, साध्वी 3 और सुरक्षा कर्मचारी 71। यूँ ये कुल संख्या बन जाती है 2367 आज सुबह 10 बजे तक। जी हाँ, आज प्रातः 10 बजे तक इन 2367 तीर्थयात्रियों को बाबा भोले के दर्शन पाने का सौभाग्य मिला है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिट करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संबंध में आप हमें सुन पा रहे हैं बालदाल के मार्ग से FM 103.7 MHz पर, पहलगाम के मार्ग से FM 100.1 MHz पर, और आप हमें DTH पर भी सुन पा रहे हैं, एवं हम प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे एकमात्र मोबाइल नंबर 9596909594 पर, और अपना अनुभव या इस प्रसारण से जुड़ी कोई सलाह सुझाव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपने वॉइस नोट्स जो है हम तक पहुंचा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपकी बात जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदू समुदाय के लिए बहुत प्रसन्नता और उत्सव का समय होता है। तीर्थयात्री बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही आशा के साथ, बहुत ही नवीनकरण के भावना के साथ स्वामी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में हाजिर होते हैं और वो फिर बहुत श्रद्धा के साथ, शांति और फिर संतुष्टि की भावना के साथ प्रसन्न होकर बाबा भोले के दर्शन करने के बाद अपने घरों की ओर लौटते हैं। श्रोताओं, ये एक ऐसी यात्रा है जो शारीरिक रूप और आध्यात्मिक रूप से कठिन है, अवश्य है, लेकिन एक ऐसी यात्रा भी है जो अर्थ और महत्व से भरी है। बाबा भोले के भक्तों को अक्सर बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरकर पहाड़ों के माध्यम से पद यात्रा करनी पड़ती है। हालांकि यात्रा आध्यात्मिक और आत्मनिरीक्षण और चिंतन का एक अवसर भी है। यात्री पवित्र गुफा में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने के साथ साथ वो हिमालय की सुंदरता और प्राकृति की सुंदरता का अनुभव भी करते हैं और फिर यहाँ के सुहाने से मौसम का आनंद भी लेते हैं, क्योंकि यात्री जो है ज़्यादातर अधिकतर गर्म क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और यहाँ के सुहाने मौसम का आनंद फिर उनको कुछ ज़्यादा ही आता है, अधिक ही आता है। और हम कहेंगे बहुत ही भक्तिशाली होते हैं वो भक्त, जी हाँ, बहुत ही भक्तिशाली होते हैं वो भक्त जो बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त करने के बाद पवित्रता हासिल करने में सफल होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं मनुका

हमने आप के साथ हैं जिन्होंने इस वर्ष हाजिरी दी, और इस हम ये कहेंगे कि आप पवित्र गुफा में आपने हाजिरी दी और देकर इस पवित्र यात्रा के बाद पवित्रता हासिल करने में आप सब यही हमारी मनोकामना है कि सक्षम हुए हों।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में और आप हमें सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस एवं न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि आज जो है 11 बजे तक कुल 3,924 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के दर्शन का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,490, महिलाएं 1,260, बालक 54, साधु 16, साध्वी 3 और सुरक्षा कर्मचारी 100। यूं कुल मिलाकर आज 11 बजे तक 3,924 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के द्वार पर माथा टेका है और दर्शन किए हैं।

श्रोताओं, पवित्र श्री अमरनाथ जी के यात्री समूह दर समूह जम्मू पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को बहुत उत्सुक नज़र आते हैं। लगातार पहुंच रहे इन तीर्थ यात्रियों के जत्थे जम्मू के रेलवे मार्ग और सड़क के माध्यम से जम्मू में प्रस्थान करके टोकन, रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड्स, मेडिकल चेकअप्स करा के अपनी बारी का की जो है प्रतीक्षा में बहुत उत्सुक नज़र आते हैं। और फिर दूसरी ओर दर्शन करने के बाद तीर्थयात्री भी अपनी यात्रा सुखद और मंगलमय तरह से पूर्ण होने के बाद अपने अपने घरों, अपने अपने क्षेत्रों की ओर लौट रहे हैं। और तीर्थयात्री यहाँ पर ये आपसे कहना चाहेंगे कि प्रशासन की सुविधाओं से संतुष्ट हैं और सुरक्षा कार्रवाई से भी बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ से वापसी पर भी तीर्थयात्री अधिक अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाओं से प्रसन्न होकर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सारे प्रबंध और व्यवस्थाओं के लिए सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ जो है वो आती रही है और अभी भी आ रही है। और आज हम ये कहेंगे कि आज प्रस्थान जिन्होंने किया, आज 21वां जत्था जो है घाटी की ओर रवाना किया गया बालताल के मार्ग से, जिनमें 3,229 तीर्थयात्री जो है रहे और 151 छोटी बड़ी गाड़ियों में इनको घाटी की ओर रवाना कर दिया गया। और हम ये कहेंगे कि प्रशासन की व्यवस्थाओं के अच्छे कार्य की ये एक उदाहरण है। यात्रा के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन करना भी बहुत ही आवश्यक है। और जो तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए ना सिर्फ आसानी या सरलता बना देता है बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए अनुशासन को अनिवार्य भी बनाया गया है।

जी श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के विशेष प्रसारण में। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य है, और ये भी यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आधार शिविर भगवती नगर में या दूसरे आधार शिविरों में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जो है बहुत ही ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए ये सब प्रेरित भी करता है और उनके जोश उत्साह को भी बनाए रखता है। ये भी हम ये कहेंगे कि हर सुबह जो है तड़के ही तीर्थ यात्रियों के रवाना होने के प्रस्थान होने से पहले ही बाबा भोले के जयकारों से और जाप की आवाज़ें जो है बाहर तक सुनाई देती हैं, जो पूरे क्षेत्र को मंत्र मुक्त कर देती हैं। और ना सिर्फ एक ट्रांजिट कैंप में बल्कि हर एक ट्रांजिट कैंप में यही देखने को मिल रहा है। और जहां तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रतीक्षा में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए नज़र आते हैं, और उन भक्तों को, इन श्रद्धालुओं को

या 2310, महिलाएं 590, बालक 14, साधु 45, साध्वी 40। और आज जो है विदेशी तीर्थयात्री भी इनमें शामिल है, जो कि पुरुष हैं, जिनकी संख्या 30 है। इन सबको, यानी कि जो कुल मिलाकर 3029 तीर्थयात्री, इनको 151 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर बालताल के मार्ग से जो है प्रस्थान कराया गया। और हमारी प्रार्थना यही है कि आप की ये यात्रा सुखद रहे, सफल रहे, सुरक्षित रहे।

श्रोताओं, अब से बस कुछ ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचार के लिए करें बस जरा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चल्लूरु में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चल्लूरु के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रत्न विभूषित। बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और आज 12 बजे तक कुल मिलाकर 4834 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोले के द्वार पर जो है वहाँ पर दर्शन किए हैं, जाकर दर्शन किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 3095, महिलाएं 1515, बालक 66, साधु 19, साध्वी 3 और ट्रांसजेंडर

एक और सुरक्षा कर्मी 135 और यूं ये आंकड़ा बन जाता है 4834 जिन्होंने बाबा भोले के दर्शन जो है आज 12 बजे तक किए हैं।

0: चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं, चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के संबंध में ये प्रसारण, और इस प्रसारण में हम यात्रा से हर छोटी बड़ी जानकारी जो है आप तक पहुंचाते हैं। और अभी आपको बता दें कि आप जो है आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने कोई सलाह कोई सुझाव जो है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे एकमात्र मोबाइल नंबर 9596990954 पर, यानी 9596990954 पर आप जो है अपने अनुभव या इस प्रसारण से जुड़ी कोई सलाह कोई सुझाव अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली मैसेज भी जो है कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने वॉइस नोट्स भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम जो है आपके वॉइस नोट्स फिर अपने इस प्रसारण में शामिल अवश्य करेंगे। आपके सुझाव, आपकी बात जो है, आप की सलाह जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व रखती है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा 2026 पूरे जोरों शोरों से चल रही है। अगर आप भी इस पावन यात्रा पर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं तो अगले एक मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बातें आपकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएंगी। सबसे पहली बात, इस साल की यात्रा 28 अगस्त 2026 यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, तो अभी भी आपके पास बाबा के दर्शन का पूरा मौका है। एक और बात, सिक्योरिटी के लिए RFID टैग पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसके बिना आगे एंट्री नहीं मिलेगी। और हाँ, अपना कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी कि CHC भी साथ रखना ज़रूरी है। आपको बता दें कि इस बार हमारी यात्रा देश की पहली जीरो लैंडफिल यानी कि कचरा मुक्त रिलीजियस यात्रा बन रही है, तो रास्ते में गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं और प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। प्योर पानी यानी कि साफ पानी के लिए जगह जगह वाटर ATMs लगाए गए हैं। इस साल पहली बार पूरे रूट पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन से नज़र रखी जा रही है ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। और आपको बता दें कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो अपने साथ आप गर्म कपड़े जो हैं वो ज़रूर साथ रखिएगा, जिसमें जैकेट्स, स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स, कैप्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ होनी लाजमी है। और बेस कैंप के आगे जो हैं ATM नहीं चलेंगे, इसलिए कैश यानी कि नकद पैसे ज़रूर साथ रखिएगा। तो चलिए, श्रद्धा सुरक्षा के साथ और महादेव के जयकारों के साथ आप अपनी यात्रा जो है वो जारी रखिए और सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल एफएम पहलगाम पर। और श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

Thank you.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The Speaker said the House

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हुई लगातार भारी वर्षा से जो भारी वर्षा हुई उसकी वजह से जो पहलगाम का प्राचीन मार्ग है उसमें उस रास्ते से उस मार्ग से जो है यात्रा को निलंबित कर दिया गया है और जम्मू के भगवती बेस कैंप से यात्रियों को सिर्फ बालतल बेस कैंप के लिए रवाना किया जा रहा है और जो बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा की यात्रा है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो चल रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि जब तक पहलगाम का जो प्राचीन मार्ग है वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक सभी लोग सभी जो हमारे यात्री हैं वो बालतल मार्ग का ही इस्तेमाल करें और किसी भी जानकारी के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करें। तो इसलिए आपको प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है ताकि आपकी जो यात्रा है वो सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके और बाबा बर्फानी के दर्शन आप प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम आपके लिए आप तक जो है क्षण-क्षण की सूचना पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 FM पहलगाम 100.1 MHz DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी इस यात्रा का एक महीना लगभग बचा हुआ है और अभी तक लाखों यात्रियों ने जो है बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि बाबा बर्फानी का बुलावा आप सबको आएगा और बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो प्राप्त करेंगे। अगर आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं तो आपको आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को जो है एक्सेस चेक पॉइंट्स यानी कि एंट्री गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती है। आपको जो है एडवांस रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देश भर के लगभग 550 बैंक ब्रांच जैसे कि PNB, SBI, JK बैंक और येस बैंक के ज़रिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उम्र की सीमा जो है वो रखी गई है, 13 साल से 70 साल के लोग ही सिर्फ यात्रा कर सकते हैं। 6 हफ्ते से ज़्यादा की जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो इस यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, उनको जो है इजाज़त नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको अपनी जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो साथ रखनी बहुत ज़रूरी है। वो हर यात्री के पास किसी ऑथोराइज सरकारी डॉक्टर द्वारा साइन किया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि आप ये जो यात्रा है दो मार्ग से कर सकते हैं। पवित्र गुफा तक जाने का जो रास्ता है वो दो मार्ग से है, एक है बालतल का मार्ग और दूसरा है पहलगाम का प्राचीन मार्ग, जिसे पारंपरिक मार्ग भी कहा जाता है। पवित्र अमरनाथ गुफा जो है वो 3,888 मीटर्स यानी कि 12,756 फीट की ऊंचाई पर जो है स्थित है। यात्री जो है आपको बता दें कि दो, जैसा कि मैंने कहा कि यात्री दो रास्तों से पवित्र गुफा की ओर जा सकते हैं, एक बालतल का रास्ता है और एक पहलगाम का रास्ता है। अगर हम बालतल मार्ग की बात करें तो ये रास्ता 14 किलोमीटर का है और आने जाने में 1 से 2 दिन लगते हैं। अगर रास्ते की स्थिति की बात करें तो खड़ी चढ़ाई है, नैरो रास्ते हैं और थोड़ा मुश्किल रास्ता है। कुछ ज़रूरी पड़ाव आते हैं जैसे कि डोमेल है, संगम है और उसके बाद होली केव यानी कि पवित्र गुफा। और किसके लिए ये सही रहता है, जो नौजवान है या जो फिज़िकली फिट लोग हैं वो इस रास्ते से अगर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी रहती है। और अगर हम पहलगाम मार्ग की बात करें, ये पारंपरिक मार्ग है और प्राचीन मार्ग है। कुल मिलाकर 46 से 48 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो रहती है। एक तरफ की यात्रा में 3 से 5 दिन आपको लगते हैं। अगर रास्ते की स्थिति की बात करें तो धीमी चढ़ाई है, बड़ा रास्ता है और शरीर को मौसम के अनुकूल ढलने का वक्त मिलता है। ज़रूरी पड़ाव जो आते हैं वो है चंदनवारी, पिसू टॉप, शीशनाग और पंचतरनी। ये रास्ता बुज़ुर्गों, परिवार और पहली बार जाने वालों के लिए ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर सर्विस भी मिलती है और अगर बुज़ुर्ग और कम समय वाले यात्री जो हैं वो जाना चाहते हैं दर्शन के लिए तो वो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध जो है वो ले सकते हैं, वो भी उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर बालतल सेक्टर से अगर जाना चाहते हैं तो आप चौपर नीलग्रास से पंचतरनी के लिए उड़ता है, वहाँ तक जा सकते हैं। और पहलगाम सेक्टर की अगर बात करें तो चौपर जो है वो पहलगाम से पंचतरनी के लिए उड़ता है और हेलीकॉप्टर आपको पंचतरनी पर ड्रॉप करता है। वहाँ से गुफा तक का बचा हुआ 2 से 6 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल या खच्चर या पालकी से पूरा करना पड़ता है। और हेलीकॉप्टर टिकट लेने वालों को अलग से यात्रा जो परमिट है वो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर RFID ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जम्मू या श्रीनगर बेस कैंप पर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एक RFID कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को गले में हमेशा
पहन कर रखना ज़रूरी है। और जम्मू, श्रीनगर, बालतल और पहलगाम में बड़े ट्रांजिट कैंप्स लगाए गए हैं। हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल कैंप्स और फ्री खाने के लिए लंगर्स की सुविधा भी है। और अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो गुफा के आसपास और पूरे रास्ते में टेलीकॉम नेटवर्क्स जो हैं उनको बेहतर कर दिया गया है ताकि यात्री अपने परिवार से जुड़े रहें। तो ये थी ज़रूरी जानकारी अगर आप इस सफ़र पर निकल रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाए, आपकी जो यात्रा है वो आसान हो जाए और बाबा बर्फानी के दर्शन आप प्राप्त कर सकें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही आज पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज किया है। झारखंड में 16 माओनवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के साथ खुद सुपर्दगी की। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेज में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया। और IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहिरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुक्काम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुल्कगीर मुजाहिरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा है कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहिरों के दौरान तलबा और पुलिस अफसरान के जख्मी होने के इल्जाम की एक शफाफ और आजादाना तफ्तीश कराए जाने की जरूरत है। दरखास्तों के एक जत्थे की समाअत करते हुए, जिनमें मुजाहिरों के दौरान पुलिस का मुबैना तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हिदायत जारी की है। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीतने पर पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद दी। बाद में जनाब ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि ऐवान में कामकाज खुशसलूबी के साथ होना चाहिए और पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बामकसद बहस व मुबाहसा होना चाहिए। जनाब बिरला ने सरकार और अपोजिशन दोनों पर जोर दिया कि इत्तेफाक राय कायम करके मजकूरा बिल पर बहस शुरू की जाए।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: जब शोरगुल होता रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी मामले पर हंगामाराई के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने आज कहा है कि NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत की तिजारत और आज़ाद तजारती समझौतों के मुतालिक ताज़ा तरीन हालात के बारे में मालूमात फराहम की गई। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने उम्मीद जाहिर की कि सभी सियासी पार्टियां सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहसे में तामीरी रुख अपनाएंगी।
2: आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने रियासत में बार बार आयात के बारे में पंजाब सरकार की नुक्ताचीनी की और पंजाब के वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 साल के दौरान पंजाब में पेपर लीक और नकल के 6 बड़े वाकयात हुए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने आज कहा है कि अपोजिशन पब्लिक इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहसे के तई पुरउम्मीद है। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने पूरे निज़ाम का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के धड़े NCPI ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तहानात में पेपर लीक के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। वजीर आजम ने नीट इम्तहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को

0: अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैन अलावामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का रबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकाम से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोदी नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैन अलावामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। हुकूमत ने 10 और 20 रुपए की कदर के प्लास्टिक के बैंक नोट शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक के तजवीज को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए की कदर वाले 1-1 अरब रुपए चलन में लाने के लिए हुकूमत को एक तजवीज भेजी है। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कोल्हान और लातिहार खित्तों से ताल्लुक रखने वाले 16 सरगर्म माओनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम मामलों में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत बी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखादेही मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए इंतहाई तेज़ बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक के लिए बहुत तेज़ बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमाल मशरकी भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही मुअत्तल कर दी गई।
1: Below 18 years and those having no criminal record. Both houses of parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. Red alert issued for extremely heavy rainfall in Chhattisgarh and Odisha. Orange alert for several North Indian states including Delhi. The Supreme Court today directed the release of student protesters who are under 18 and have no criminal records. The court asked authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the recent nationwide protests over the NEET paper leak. The Apex Court also observed that there was a need for a fair and independent investigation into the allegations of injuries to students and police officials during the student protests last week. Hearing a batch of petitions alleged

अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला देवता है, मनुष्य है या कोई राक्षस। जो भी सच्चे दिल से उन्हें याद करता है वो उसे मनचाहा वरदान दे देते हैं। हम भी आशा करते हैं कि आपकी मनोकामनाएं, आपकी प्रार्थना जो है वो बाबा भोलेनाथ जो हैं वो सुने और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। आप दर्शन के लिए जा रहे हैं और आप हमें सुन पा रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के ज़रिए।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 FM पहलगाम 100.1 MHz DTH और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि अभी हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट दर्शन का आया है उसके अनुसार आज दोपहर 1 बजे तक, जी हाँ, कुल 5,871 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 3,645, महिलाओं की संख्या है 1,952, 84 बालक हैं, 20 साधु, 4 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 165 सुरक्षा कर्मी।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हाँ श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे जम्मू, जी हाँ, जहाँ से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जावेद
3: जी, देखिए यहाँ इस वक्त सुबह की तेज बारिश के बाद मौसम खिला हुआ है, धूप एकदम तेज है, गर्मी और उमस भी है, लेकिन इस दौरान ठंडी हवाएं भी बीच बीच में चल रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी राहत महसूस हो रही है। और आज यहाँ खासतौर पर रघुनाथ बाजार मंदिर में महाआरती के पेश नजर स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी रश है। श्रद्धालुओं की भी यहाँ खूब सेवा भी हो रही है, भोजन का इंतजाम है और कई श्रद्धालु यहाँ के मशहूर ढाबों से भी स्थानीय व्यंजनों का मजा ले रहे हैं। रघुनाथ बाजार के साथ साथ रेजिडेंसी रोड पर भी श्रद्धालुओं की टहलकदमी हो रही है, कहीं खरीदारी कर रहे हैं और बार बार जो बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले अपना वक्त बिता रहे हैं। और बहुत खूबसूरत भक्तिमय माहौल है और जम्मू के चारों तरफ देखा भी जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आज भी भगवती नगर निवास स्थान से 3000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के जयकारों की गूंज के साथ ही यहाँ से रवाना हुए और जो माहौल है वो एकदम बेहतर माहौल में ये तीर्थ यात्रा हो रही है। और इस बीच अमरनाथ यात्रा को और सुचारू बनाए रखने के लिए माफ कीजिएगा, प्रशासन की ओर से आधार शिविर और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाने पीने की व्यवस्था को और सुनिश्चित बनाया जा रहा है। हालांकि मौसम की जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर जो है सुरक्षा जांच के बाद ही जो यहाँ श्रद्धालु हैं उनके वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं बसें, उनकी सुरक्षा जांच के बाद ही, क्योंकि कई मौकों पर देखने का आया कि श्रद्धालु जिन बसों में जा रहे हैं कई बसें रास्ते में भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन उसी को चलते यहाँ जो बसें हैं उनको पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जाता है कि बसें बिल्कुल ठीक है और इस दौरान श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। प्रशासन ने खास तौर पर ये इंतजाम भी किया है कि बसों को, उनकी साफ सफाई, वाहन जो है उनको पूरी तरह से पहले चेक किया जाए और उसके बाद ही श्रद्धालुओं के लिए वो इस्तेमाल में लाया जाए। तो प्रशासन ने उसके अलावा खास तौर पर श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मौसम के बदले रुख के चलते दिशा निर्देश का पूर्ण तरीके से पालन करें और एक साथ मिलकर काफले के साथ चलें और मौसम के रोक के कारण सावधानी भी बरतें, क्योंकि 28, 29, 30 और 31 के बीच में जो है मौसम विभाग ने खास तौर पर कभी कभी कहीं कहीं बारिश, कहीं तेज बारिश, कहीं तेज से तेज तर बारिश का भी अनुमान जताया है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जम्मू शहर में मौसम बिल्कुल बेहतर बना हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जो जत्था यहाँ से निकला था वो वादी पहुंच भी गया है और घाटी में बाबा बर्फानी के श्रद्धालु जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतर अंदाज में अपने जो बालताल का मार्ग है उसकी तरफ रुख कर चुके थे। और जो अभी तक जानकारी है कि अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही है। जी
2: जी जावेद, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों मौसम खराब होने की वजह से यात्रा कई दिनों के लिए रुकी हुई थी, उस वजह से जम्मू में जो यात्रियों का बैकलॉग इकट्ठा हो गया था उसे क्लियर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्ट्रैटेजी जो है वो है, और क्या अभी भी जम्मू में एक्स्ट्रा भीड़ है?
3: देखिए, जिस तरह से आपने स्ट्रेटजी की बात की और जो जिस तरह से इंतजाम को देख रही है प्रशासन, 6 दिनों तक ये यात्रा स्थगित जरूर रही, लेकिन उसके बाद लगातार यात्रा यहाँ से बराबर हजारों की तादाद में यहाँ से निकल रही है, 6,000 भी, 4,000 भी, आज भी 3,000 से ज्यादा, तो लगातार यात्रा जो है वो बराबर यहाँ के ट्रांजिट कैंप से पहले आधारशिवर भगवती नगर पहुंचती है और उसके बाद उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जा रहा है। मौसम खराब होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग पर युद्ध स्तर पर जो इंतजाम चले, जो जिस तरह से भूस्खलन के वाकत हुए या कहीं कहीं पहाड़ियां निकल के आई, लेकिन साथ ही जो मशीन और कर्मचारी हैं उन्होंने पूरी तरह से रास्ते को साथ साथ ही चलने के लायक भी बनाया और उसके बाद ही

0: वो बिता रहे हैं यहाँ के स्थानीय मंदिरों में, कहीं कहीं जो यहाँ के बड़े तारीखी मंदिर हैं वहाँ पूजा अर्चनाएं होती हैं श्रावण के महीने में। और इस बीच माता वैष्णो देवी की भी यात्रा खुल चुकी है, तो जिनके पास बहुत टाइम है वो माता वैष्णो देवी की यात्रा से होके भी पहुंच रहे हैं यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई किसी तरह का कोई बैकलॉग यहाँ उस तरह से प्रशासन बनने दे रही है। बराबर पूरी तरीके से अनुशासित तरीके से जो यहाँ पहला स्थान है भगवती नगर का, वहाँ तीर्थयात्रियों को जैसे ही तीर्थयात्री निकलते हैं तो दूसरे एक और काफिले को तैयार किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना है, एडवाइजरी का पालन करना है, और खास तौर पर जिस बदले मौसम में तमाम दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करना है तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और खासतौर पर न सिर्फ उन्हें बोला जाता है बल्कि उन्हें उस चीज के लिए बताया भी जाता है, इंडिविजुअली देखा भी जाता है, अलग अलग श्रद्धालुओं को देख रेख के पूरा उनका स्वास्थ्य का चेकअप करके पूरे उनके जो इस पहाड़ी रास्ते में जिस तरह की जरूरतें होती हैं छातों की, बरसाती की, लंबे जूते की, उसके अलावा जो जिनके पहाड़ी रास्तों से श्रृंखलाओं से होकर जाना है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, तभी ये यात्रा अपने प्रथम स्तर पर है। और लाखों की तादाद में 4 लाख से ऊपर ये यात्रा हो गई है, अभी पूरा 28 अगस्त तक ये यात्रा अभी चलनी है, तो तमाम तरह के कदम लिए जा रहे हैं और यात्रियों श्रद्धालुओं को पूरी सेवा के साथ बेहतर माहौल में और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से यात्रा को चलाया जा रहा है।
1: जी जावेद, जैसा कि आपने कहा कि अभी सिर्फ बालतल रूट के लिए ही कॉन्वॉयज जो हैं वो भेजी जा रही हैं, तो जो पहलगाम रूट के यात्री हैं उन्हें जम्मू में क्या कहा जा रहा है, क्या उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है बालतल रूट के कॉन्वॉयज में?
0: नहीं, देखिए वो सही बात है आपकी, क्योंकि अभी तक कई बार हमने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि ज्यादा जो श्रद्धालु है वो पसंद करते हैं प्राचीन मार्ग पहलगाम का
1: जी,
0: और ज्यादा से ज्यादा यात्री अभी तक वही पहलगाम मार्ग से ही गए हैं
1: जी।
0: लेकिन मौसम के चलते क्योंकि जो पहलगाम का प्राचीन मार्ग है वो सख्त भी है, उसकी चढ़ाई भी सख्त है, और उसके अलावा उस पे चलना भी जब मौसम ठीक ना हो तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो सारे कदम भी उठाए जाते हैं, उन्हें उस तरह से मोटिवेट भी किया जाता है, क्योंकि एक ही बार मौका नहीं आता है, तीर्थयात्री कई जो है वो दसियों बार आ चुके हैं और हमेशा वो हर साल भी कोशिश करते हैं आने की, तो मौका जिस तरफ से भी बाबा बर्फानी दे उस तरफ से उनका जो दर्शन है वो सबसे बेहतर है, तो इसलिए उन्हें उस चीज की मोटिवेशन जरूर होती है कि ये बाबा बर्फानी के हाथों में है, उन्हीं की कृपा की वजह से ही जो मौका और जिस रास्ते से जिस मार्ग से भी वो दे उस मार्ग से श्रद्धालुओं को चलना है। इसमें आस भी जुड़ी है, आस्था भी जुड़ी है, और श्रद्धालुओं को पूरी तरह से इस बात को लेकर किसी तरह का कोई नाराजगी नहीं है कि उन्हें जानबूझकर पहलगाम के रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सब प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम है जी।
1: बिल्कुल सही बात है, और प्रशासन जो भी कदम उठाता है वो हमारे यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही होता है और उनकी यात्रा जो है वो सही तरीके से उसी के लिए होता है। यहाँ पर जावेद आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि हमारे पास जो खबर है कि जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन जो है वो यात्रियों को स्टेशन से बेस कैंप तक फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही है, इस सर्विस का फ़ायदा यात्रियों को कैसे मिल रहा है और ग्राउंड पर इसका क्या रिस्पॉन्स है?
0: देखिए ये व्यवस्थाएं जो है मैंने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि यहाँ की बाजार एसोसिएशन, यहाँ की मुख्तलिफ स्वयंसेवी संस्थाएं और हर साल जो टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन हैं वो हर साल ये कोशिश करती है कि वो भी श्रद्धालुओं की उस आस्था का हिस्सा बने, भले ही वो बाबा बर्फानी के दर्शन की तरफ न जाए मगर श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनकी सेवा के लिए वो हमेशा ये कदम हर साल उठाते हैं, और इस साल भी उन्होंने कई बार ये कदम उठाए हैं। अभी तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा वक्त है आगे भी, तो ये कदम वो उठाते हैं, और इससे हालांकि तीर्थयात्री जो हजारों में है सभी उसी सर्विस से नहीं पहुंच पाते, लेकिन जिनको वो सर्विस नसीब होती है और वो पहुंचते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को जहां पहले ट्रांजिट कैंप लिया जाता है वहीं ट्रांजिट कैंप से उनकी सारी जो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, बाकी जो सारी चीजें होके फिर वो जो है कि पहले स्थान भगवती नगर पहुंचते हैं, तो यहाँ सर्विस

0: गई है उसकी, उन्होंने इस चीज का आह्वान भी किया है। तो जिनको वो सर्विस मिलती है नेचुरली है कि वो एक आसान तरीके से मिली हुई सर्विस है, उन्हें अच्छी गाड़ियों में वहां तक पहुंचाया जाता है, तो वो तमाम तरह समाज का हर हिस्सा इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। उसी तरह से टैक्सी एसोसिएशन, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर आपको मिल जाएंगे, तो वो उनका ये काम, वो ये अपना अपने लिए वो एक बहुत बड़ा कदम भी समझते हैं कि वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं, ताकि न सिर्फ वो जो भगवती नगर का निवास स्थान है, बल्कि यहाँ के जो पर्यटक स्थल भी है उनके साथ भी जुड़ के, क्योंकि कई यात्री जिनके पास अभी वक्त है, तो उस सर्विस की वजह से, उनके अच्छे स्वभाव की वजह से, उनकी इस जो सेवा है उस भाव के वजह से तीर्थ यात्री और भी जगहों पर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका भी जो जो कारोबार है, उनका भी जो ये कमाने का कारोबार है, उसको भी बल मिलता है, उससे भी उनके लिए भी एक अच्छा मौका होता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, जो यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो एक ही बार नहीं पहुंचते हैं, ये भी उनके लिए भी मौका होता है कि वो उनको जम्मू के कई स्थान, जैसे मैंने कहा कि रघुनाथ बाजार में है, रेजिडेंसी रोड पर है, कहीं आगे पीछे मुबारक मंडी का बहुत बड़ा एक यहाँ स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो वहां तक ले जाते हैं, और उससे क्या होता है कि शहर भी श्रद्धालुओं को पता लगता है और तीर्थ यात्रा भी हो जाती है, क्योंकि जम्मू जो है वो खास तौर पर तीर्थ स्थलों के लिए बड़ा मशहूर है, और यहाँ का जो पर्यटन है वो तीर्थ स्थलों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कदम भी स्वयंसेवी संस्थाएं, बाजार एसोसिएशंस भी इस चीज से खुश भी है, उनके कारोबार की भी वृद्धि होती है, और खास तौर पर जो मेवा, ड्राई मेवा यहाँ मिलता है कई बाजारों में, ये रेलवे स्टेशन के बाहर एक बहुत बड़ा बाजार है, शिव मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ बहुत तरह के जो ड्राई मेवे मिलते हैं, कुछ लोग अपने साथ जम्मू कश्मीर के सेब ले जाते हैं और चीजें ले जाते हैं, जो अखरोट ले जाते हैं, तो एक उनका भी मौका होता है कि इस तीर्थ यात्रा को कारोबार के साथ भी कैसे जुड़ाया जाए, तो इसके साथ साथ हम कहते हैं कि खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं यहाँ के मुख्य बाजारों में भी, तो उस तरह से जो टैक्सी एसोसिएशन है, बाकी जो एसोसिएशन है, वो भी जुड़ना चाहती है यात्रा के साथ, ताकि जम्मू में न सिर्फ पर्यटन स्थलों तक ही, न सिर्फ यात्रा तक ही ये सीमित रहे, बल्कि पर्यटन स्थल भी और यहाँ के बाजार भी और यहाँ जम्मू देखने का भी उनको मौका मिले।
1: जरूर जरूर इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जावेद आपका धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तक ग्राउंड अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा और अमरनाथ यात्रा 2026 की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर जो है वो बनाए रखिएगा। आपके साथ आगे भी हम जुड़ते रहेंगे।
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया जी। श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू से। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अगर आप जम्मू से निकल रहे हैं तो कट ऑफ टाइम और वेदर एडवाइजरी जो है उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आगे और भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस विशेष प्रसारण में। तो यहाँ पर आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल FM पहलगाम के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे पास 2 बजे का दर्शन अपडेट आ चुका है और उसके अनुसार कुल 6774 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 4185, महिलाओं की संख्या है 2275, बालकों की संख्या है 104, 22 साधु, 5 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 182 सुरक्षा कर्मी। जी हाँ, ये अपडेट है 2 बजे तक का। आज दोपहर 2 बजे तक कुल 6774 श्रद्धालुओं ने जो है बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको लिए चलेंगे हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन। आइए सुनते हैं क्या अपडेट्स हैं उनके पास। जी तस्कीन
3: जी, शुक्रिया। आज के हाईवे अपडेट्स ये हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि आज श्री अमरनाथ यात्रा सुबह जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना की गई और इसके बाद कश्मीर से भी जो बालतल से वापस जो कानवाई आ रही थी, क्योंकि बालतल